0: रांची भी चिया दी मुने भांया रचरी
1: ते भांया हरी बा या वो शो तो अंगरे का शु चिया की कोई डोलों ने की तुंडे तंग जे वो थी ताकत गई ते कर सा किंगे चौक शा सा सेंस में मिम्मी से ना पामी चुंबा डोंगलिंग चितो ना गेर लेम दा चिप्री मंग शावे तर हर्ता चुरता इंजी शु गेमनी आलो पाम जुआ
0: 让给那位民族子弟提这个那位预备大事。小贤现在三不懂的，没心啊，国东去读药嘛哩。你那让给我，中国子孙及国东辈若不吃就哩，是吧？英啊，你让普丁的我就托不起伊。
1: 嗯，我让你细语。
0: 钱呢？我交钱去给主任的。
1: 就是。